दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिसे मैं करती हूँ प्यार और जिसे करती हूँ मिन्नतें।